बॉर्डर जमीन पे ए द कोने पे डीजे नशे में पड़े दुख किसी के यहाँ पे बंजे बचीजे सबके फोनों पे कॉले लौंडे नहीं सोले नोटों की गड्डी वो उड़ाते वो जो गए नहीं कॉलेज जमाना रन दिस ईयर वन लेस फियर आई एम लेट दे गो रन दे शिट 100 इयर्स लेटर आई फील इट समथिंग्स नियर पेन शार्पर देन अ मदरफकिंग हंटिंग स्पीयर